नाही जिस पह करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिपत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है उद दिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह

प्रबंधन तो कह रहा है चांद कमल हृदय समय है। साध बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक का दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीप प्रकाशे नानक परम मोह दुख तैते नासे तब तुम्हारे ठाठ वरताई अंध प्या दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पाव चुका निरपा होए बसे सगल ब्याद मंथे खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मरारी थेत पाई चूके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर रस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगले मोहे अपने चढ़त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्वन निरंतर एको सोए ओत पोत रव्य रूप रंग पय प्रगा साध गै संग राज रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सारष्टपदी संत जना बिन करो विचार एक सिमर नाम आधार आप रूप आप समीत विसारो चरण कमल हृदय में उरथारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गोहो नाम हर वत एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन का चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रेत जिस शोभा का करे फली करनी साफ शोभा बज हर की शरणी अन्य को पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दर गए परवान मन पर बोधो हर कह नाय दह दिस्तावत आवै ठाए ताका विघ्न न लागे कोय जा कर देव से हर सोए कलता ती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पावन से पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अविनाशे कोह नानक काटी जम फासे तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गबन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरुदेव एव रत्न जन्म का होयो दार हर हर सिमर प्राणया दार अनक भावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटुंब अरबनता इन तेत कहो तुम कवन सना था राज रंग माया विस्थार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रत असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस भुज ना बेगाना ना विसार नानक बचताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना वो डूबे सियाने हर की भगत करो मन

पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते भय एक अराध प्राठत गाए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक जाता श्लोक फिरत।

अपार अविनाशी सुख आपने आसन तह जन्म मरण कह का अविनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोय तब जम की त्रास कहो किस होय। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन वादे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कीस। जय ज्योत स्वरूप ज्योत संग समावे तै कैसे पूख कवन त्रिवतावे। कर्ण करावन करने गार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी सुबाय अपन संग बनाय तब कवर माय बाप मित्र सुत पाय। जय सर्व कला आपे पर बीन तह भेद कतेव कहा कौचीन। जब आपन आप उरतारे तो शगन अपशगन कहा विचारे। जह आपन ऊच अपने आपनेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्मर है विस्मत नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल छेद अपेद समाया ऊहा के सह व्यापत माया। आप सुको आपे आदेश ते गुण का नाही परवेश। जय एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप तियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा। बाव्यंत उठते ऊंचा नानक आप सुखो आपे पहुँचा। जय आप रचियो परपंच अकार पहुचा।

मिथ्या तान तान कुटुंब सुभाया, शरीर तो मिथ्या है। छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप रहा, की हो गया जे मेरा शरीर तप रहा है। हम शांत हैं हरि नाम से, असी नाम द्वारा शांत हैं। मेरी शांति भंग नहीं हुई, मेरी शांति उस तरह पीर मियां मीर। पीर मियां मीर ने अखां साफ कीतियां, कंठ साफ करिया, ते फिर अपनियां शक्तियां वल ध्यान करिया। कहिंदा हे मेरे अल्लाह, जो मैनू अज तक तू बरकतां दित्तियां मैं अज तक बरतियां नहीं सी, अज मैनू आग्या दे। कहन लग्या सचे पातशाह, फिर एक करो सेवक नू आग्या दिओ, मैं तुहानू तकलीफ देण वाले तुहानू हुक्म देण वालियां दा नाश कर दिया। महाराज कहन लगे, पीर मियां मीर एक वारी नेत्र बंद कर ते वाहिगुरु कह के खोल दे ते आकाश वल नू देख। जरा नेत्र बंद करके आकाश वल वेख्या, 33 करोड़ देवते हाथ जोड़ी खड़े, 9 नाथ 84 सिद्ध 6 जति ब्रह्मा विष्णु शिव जी, सारे जुम्मेवार देवते बड़े तो बड़े ते छोटे छोटे सारे खड़े दे, अनंत शक्तियां खड़िया, इंद्र वर्गे कमेड़ पराड़ी वर्गे 33 करोड़ देवत्यां दा राजा, वह सारी प्रजा समेत आए। पीर मियां मीर देखिया कुछ, कहिंदे जी देखिया सी फिर समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, पुछ लै। कहिंदे जी ये की कह रहे हैं हाथ जोड़ के? कहिंदे जो तू कह रहे हैं, तू भी आ गया मनदा है, ये भी आ गया मनदा है, जे सजना इन्हां नूं आग्या नहीं दित्ती तैनू कित्थों दे दियां, असी तां इसे तरह पाणा वरतौणा। बस उस वेले मत्था टेक के दोवें हथ तांग करके कहिंदा, इन्हां राजनीतिक पातशाह ने साडा इस्लाम दा बेड़ा गर्क कर दिता, इन्हां दा राज नहीं रहेगा, राज गर्क हो जाएगा। वो वापस चला गया। महाराज साहिब सच्चे पातशाह शरीर जिहड़ा जर्जरी हो गया है, सहारे तो मन तुरन दे काबल नहीं रहा शरीर की प्रक्रिया। शाम दे वक्त ये होर घटना वापरी, जदों शाम दा वक्त होया, पहरेदारां नूं रिश्वत दे के एक निर्मल आत्मा जिहदे कोल पदार्थ है खाण पीण वाला, एक नौजवान लड़की, ते जदों गुरु साहिब दे सन्मुख हो के ने नमस्कार की, महाराज ने पूछा पुत्री कौन है तू, क्यों आई है? क्या महाराज मैनू कहिंदिया शर्म आ रही है, मैं उस दुष्ट चंदू की सखी नूह हाँ, क्यों आई हाँ? सच्चे पातशाह जदे तुसी इस दुखान दे विचों है, मैं जदों जदों तुसी अन्न पानी छड़ दिता, मैं चंदू दे घर दा मैं भी अन्न जल नहीं छकिया, उदों दा मेरा जी नहीं करिया कि मेरा गुरु इस वेले प्यासा है भुखा है, ते मैं सुती भी नहीं, गुरमंत्र दा जाप करदी रही, अज मे तो रह नहीं होया, मैं तुहाडे वास्ते शरबत लै के आई हाँ, मिठा जल लै के आई हाँ, उहदे च दुध पाया, उहदे च खंड पाई है, पानी मिलाया, सच्चे पातशाह ये छको ते कुछ खाना खा लो। महाराज कहिंदे नहीं पुत्री ऐसा नहीं। कहण लगे महाराज चंदू की नूह होण की एडी सजा ना दिओ, जिथे मैं चंदू की नूह हाँ दोस्ती, मैं तुहाडे सिख की पुत्री हाँ, तुसी अपने सिख की पुत्री समझ के बेटी की भेटा स्वीकार कर लो। महाराज कहिंदे पुत्री सिखां दीआं बेटियां मेरियां अपनियां बेटियां, तेरी भावना मंजूर होई, पर मैं प्रण कर चुका कि इस दुष्ट दे घर दा खाणा कुछ नहीं। महाराज फिर मैं इस घर दे विच हुण रहना नहीं चाहुंदी, पर तुहाडी सिख्या है ते जिहनूं एक वारी पति बणा लिया छड्डिया वी नहीं जा सकदा, गुरमत दा कुंडा, मैं सिख दी धी हां, पर महाराज हुण मेरे वास्ते मेरी किस्मत फुट गई, मैं अपने आप नूं

ब्राह्मण वर्णा आए गया बदक जियो बेकारो पूडड़ै नाम विसारिया बूडड़ै क्या तुस चारो गुण छोड़ विकल दिया अब गुण का बण जारो सदड़े आए ते ना जानिया हुक्म सचे करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया बेलनहारो रूप न जाने सोहणीऐ हुक्म बदी सरकारो बालक बिरद न जाननी तोड़न हेत प्यारो नौ दर ठाके हुक्म सचै हंस गया गैनारे साधन छुट्टीम मुठी चोठ विदणिया मृतकला अंजनड़ै बारे सुरत मोई मरमाइए महल रुनी दरबारे रोवो कंत महली हो सचे के गुण सारे जल मल जानी नावा लिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे।

पाए विकारो, जम मार्ग पंथ न सुजई, उजड़ अंध गुबारो वा, ना जल लेफ तुलाइया, ना भोजन प्रकारो वा, भोजन पाओ ना ठंडा पानी, ना कापड़ शिगारो, गल संगल।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दया वै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां।

जो बीच हम तुम कछ होते तिन की बात बिलानी। अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक बखानी।

गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै,

हरे पच्छा श्री अस्तु जो करी अहु रक्षा राख ले हो मोहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मा सा

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सदरन को पल मुँह बद कियो।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट की पट पट की जानै। जावे उदक।

ताको कर पाहने अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहि तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा ਇਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਾਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰ ਭਵ अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जी अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला। सुनै गुंग जो याहि सुरसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपई को कहै। चौपई संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहे सब तो ही बखान्यो। दोहरा

छाड़ के गहियो तुहारो द्वार बाहि गहि की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन भजिया वधाइया।

हे पवित्र शब्द, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की, फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहिंदे ने अरदास कीती पर अरदास पूरी नहीं हुई, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शना वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वह भी आए हैं। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दी। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबां ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की, सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां का सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते चालीक दे करीब सिख एक पासे, तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी, इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। यह भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करती है। ठोकर लगी, थले डिग पई, सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर, ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान, मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद किया गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली नहीं। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद किया गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर, तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनूं बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम उठ के खलोई, गरज के कहन लगी, ओ दुष्टा, परा हो जा, ओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रतख दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर का बुत हो गया, हिलजुल नहीं सी सकता। फिर इसने
बेनती की थी बसंत कौर मैनू बख्श दे मैं भूल गया। ते बसंत कौर ने कहा खिमा मंगनी है ते मेरे कलगिया वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया बसंत कौर दे पैरां दे मथा टेकया एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास ए है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता।

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। कौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत। धरती होर पर होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर। एह लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया कीता होए। कीता पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ। जो तुत भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे ही उदास। असंख सूरमो पाकसार असंख मोल विलाय तार। जो तुत भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख निंदक सिर करह पार। नानक नीच कह विचार असंख ना असंख था अगम अगम असंख लो। अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखा।

0: है भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने
1: नमो देव देव अपेखी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्वपाले
1: नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे
0: अनंगी अनाथ निरसंगी।

0: चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्रपर्ती चतुर चक्र पास चतुर चक्र वस चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र
1: कर्म न काय जन्म न जाए
0: न चित्र न मित्र पर है पवित्र
2: भगवती चंद तु प्रसाद कथते की आ चिज देश की आ बिज पेश बिज लोके की आदित सोके
1: खुद मरने के पे भूत करने
2: राजंग प्रभा है की तरमंग तुझा है
1: अशोक भरने के सरबा भरने
2: जगतन कृति है की

0: सनातन साज है,
1: समस्तल सलाम है, सदैव लकाम है,
0: निर्वास रूप है, गाद है, अनूप है,
1: ओंगाद रूपे, अनाथ स्वरूप है,
0: अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे,
1: त्रिभर्गन त्रिपादे, गंजे अगादे,
0: सुबल सर्पागे, सुशर्मा अनुरागे,
1: भुगत स्वरूप है, अछिछे अछूत है,
0: के नरकम प्रनाश है, पिथुल प्रवास है,
1: निरुकत प्रभा है, सदैव सदा है, निरुकत सदा है, विभुगत प्रभा है,
0: अनुक्त स्वरूप।

0: जगदेश्वर है
1: सकल कंड
0: पर्दे पर है करुणा कर है
1: जपा जपा थप थप
0: कृत अमृत अमृत
1: मृत्य करना कृत।

एकुंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं त्रय प्रसाद स्वाये श्रावक सुत समूह सिद्धांत के देख फिरे कर चौक जति के छोर छोर

0: सब देश दिशान को पाजत डोल में दंग निगारे
1: गुंजत गोड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: पूत पविक पवान के पुपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपा श्री भगवान पजेब ने अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीरथ नान दया दप्तान सो संचम नेम अनेक बिसेख
1: वेद पुराण कतेर कुरान जमीन जबान सबान के बेख
0: पौन आहार चति चत्तार सबे सो विचार हजारक देखे
1: श्री भगवान पजे बिन पुपते एक रति बिन एक न लेखे
0: शुद्ध सिपा दुरंत दुबा सो साज सना दुर्जान दलें
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे
0: तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे
0: वीर अपार बड़े बड़े यार अभिचारे सार के तार बछैया
1: तोरा देश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया
0: गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया
1: साहिब श्री सबको सिरनायक जाचक ने एक सु एक दवैया
0: दानव देव फनिंद निसाचर पूत पविक पवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: पुन प्रतापन बाट जात है तुन पापन के बो पुंज खपेंगे
1: सा समो प्रसान फिरे जल सतर सबे अवलोक जपेंगे
0: मानव इंद गजिंद निरादप जोन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजाय के दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे
1: ये नर श्रीपत के प्रास पग तेरेंगे
0: कहाँ पे हो जो दो लोचन को मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो
1: ना फिरियो लिए सात समुद्र ने लोग गयो पर लोग गवायो
0: बास कियो बखियान सो बैठ को ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो
1: साज को सुन लो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: कहूं ले पान पूछ तरे हो सिर कहूं ले लिंग गरे लटकायो
1: कहूं लिखो रवाची दिशा में कहूं पिशा को सिस निवायो।

0: साहिब संसार प्यारे
1: दीन बंदोष जन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता
0: पाए ब्रह्म अवसर काल पाए शिव जी अवसर
1: काल पाए कर विष्ण प्रकाश सकल का।

शिवकण को सब गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो वध कियो। चीटी ते कोचर असूला, सब पर कृपा दिश कर फूला।

0: किल्पिक्षकल देखो हर्ता दुष्टो क्यों को छेकरता मन बाचित पल पावे सोई दूर न तिसे व्याप्त कोई रिलें
1: स्नेह जो यास रसना पावे स्नेह मोच लचित आवे।

0: सहज उपजय इहो सहसाई बुझाए
1: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जोए हारिया
0: ए तिसना वड़ा रोग लगा मरण मनो बिसारिया
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया
0: कहे नानक जिन सच तजिया कुरे लागे तिनी जन्म जुए हारिया
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते।

0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये।
1: मनो क्यों विसारिये वरदाता जे अगर मैं आहार पहुंचावे।
0: उसनु कोहे पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लाए।
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये।
0: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब एको जे ही करता खेल रचाया।
1: जमया परवार पला पाया।
0: छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया।
1: ए माया जित हर विसरै मोह पुजै पाओ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया।
1: हर आप मुलक है मुल न पाया जाए।
0: मूल न पाया जाए। मूल न पाया
2: पाया न जाए किसे बिटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सौपिए विचो आप जाए।
0: जिसदा जियो तिस मिले रहे हर वसे मन आए।

0: ना है मन
1: जैसे सुकर सुहान नानक मानो ताहे तन
0: स्वामी को ग्रियो ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित
1: नानक के बिद हर पजो एक मन होए एक चित
0: तीर्थ व्रत अरदान।

परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पुल्ले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनिया गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की,

निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ रंजन मन चाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी करम गाय पर कोलू चरखा चक्की चक थल वरुल बहुत अनंत लाटू मदानिया।